0: झूठा ये कोई तरीका नहीं
1: और तुमको भी कोई तरीका नहीं।
0: मेरी उल्फत की इंसल्ट यू ना करो,
1: यू शट अप,
0: यू शट अप,
1: यू शट अप,
0: यू शट अप,
1: यू शट अप, अपना रास्ता चलो।
0: यू ना कर पाओ आशिक को देखो, हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।

अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

हंसते हुए फूल ये महका हुआ गुलशन ये रंग में और नूर में डूबे हुए राहें ये रंग में और नूर में।

ये सादों पे टकरा, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है।

गलियां ये मछली हुई अटकली गलियां ये दिखती हुई खोखली रंग रलियां जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है।

0: कहाँ है भी तू? अरे मेरी प्यारी काली कोयल, कहाँ छुप गई तू? अरे जुलेखा,
1: वो आ गया। देखो देखो, मेरे फेफड़े का टुकड़ा आ गया।

0: सिनेमा टीमिले पहचाना, मेरा नाम है हलीमा, प्यार से लोग मुझे कहते हल्लो।
1: तुम्हारा नाम क्या है?
0: बाके हल्लो।

हलीमा प्यार से लोग मुझे कहते हैं हलो, जब मैं पैदा हूँ पूछो ना बात, ना दिन था ना रात, घड़ी के दो कांटे हुए तभी एक ही कांटा नजर आया, ना इधर

बदलने लगी, हाय जब मेरी कमर लटकने लगी, ऐसे ऐसे में गली गली भटकने लगी। फिर एक दिन वो मिला, क्या नाम था माटी मिले का, हाँ मैं मौज मिला, फिर तो हातिम हातिम, लल्लो लल्लो।

मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं झना नन झना नन झना नन नन नन कान कान कान धा मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं झना नन झना नन झना नन।

इतने में सूरज डूब गया, इतने में सूरज डूब गया, राधा की पायल जाग उठी। दोनों में तलाक की जाग उठी, राधा तय कर

अब रैन को दीप सवारे थे और नील गगन पे तारे थे, रैन को दीप सवारे थे और नील गगन पे तारे थे, राधा को विदा के इशारे, राधा को विदा के इशारे थे, राधा ने आंचल बांध

फूली है साथ।

0: क्या है चित चोर?
1: 1, 2, 3, 4
0: क्या है चित चोर?
1: यू सिंग लाइक किशोर बट शादी का डे
0: ओ यस सितंबर 8
1: वेरी लेट
0: डार्लिंग वेट

0: है बिल्कुल,
1: तू है बुलबुल,
0: सच है बिल्कुल, यू आर वंडरफुल।
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया जले, छम छम छम छम छम छम छम, एक गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है।

0: अच्छा
1: अरे हाँ चोर की शक्ल है गोरी
0: तो क्या हुआ
1: होगा मिलना बहुत जरूरी
0: चल पगली।

मेरा भी जीना, ओ तू तो आता है पसीना। कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना। हक हक हक माँ तो आई बड़ी अदा से, बोले क्यों खफा खफा के।

हाय हाय हाय हाय। मेहमान कब रुके हैं कैसे रोके जाएंगे, मेहमान कब रुके हैं कैसे रोके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे।

0: कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली।
1: मैं तो चली रे चली रे, मैं तो चली रे, पर कार की है कल कटरे में दुकान। हमारे भैया है दुकान, हमें दरगाह है काम, हमें दरगाह है काजी।
0: हे भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी,
1: यो यो यो यो।
0: टिकट कहाँ है?
1: टिकट नहीं है।
0: फिर क्या होगा?
1: फिर क्या होगा, नाजी खाते गाना गाते बाबूजी को प्यार।

0: चले दार सुबेदार पीते गुड़ाकू पीते पीते चिलम चली वार तमाकू तेरे घूंघट में पिक पिक घूंघट में पिक पिक घूंघट में पिक पिक हे हे
1: डॉगी डॉगी डॉगी डॉगी डॉगी डॉगी
2: यो यो यो यो
1: डॉगी डॉगी डॉगी डॉगी डॉगी डॉगी
2: यो यो यो यो
0: देखो चल रे चला हाय मेरा मन
2: तेरी गोरी गोरी प्यारी प्यारी पांडी चुतवन
0: देखो चला रे चला हाय मेरा मन देखो वो चला रे मेरा मन हे
1: डॉगी डॉगी डॉगी डॉगी डॉगी डॉगी
2: यो यो यो यो
1: डॉगी डॉगी डॉगी डॉगी डॉगी

0: हो कसब घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान धड़क पन्ने छोड़ो।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जा।

में कैसा भोला भाला हाँ। कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखे।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। सब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: अब उस्तादी दिखाओगे या कव्वाली शुरू करोगे?
1: अरे कव्वाली सुनाता हूँ, सुनो छोकरे लोग, आज ऐसा जम के बजाओ कि मेरी जोरू का तंबू हदर जाए।
0: और बहनों ऐसा गाओ कि मेरे मियाँ का झोपड़ा उड़ जाए।
1: बजाओ रे।

अम्मा को झूठ बोला, बाबा को झूठ बोला, अल्लाह अल्लाह झूठ बोला, खत्म से झूठ बोला। पर तुझको लाखों हलालों की हराम कमाई दिया और तू मेरे को ताना दे रही, दो बादाम खिला के बोल रही, अरे बादाम नो लाते कते सुन दुख में चौपा को, अजी छिलको छिला को, अजी हाथ को।

0: लोटा।
1: सबसे बड़ी बात जो म्यूजिक में होती है वो सुर होता है। सुर नहीं तो फिल्म हम कहते हैं बेसुर है। म्यूजिक की वैल्यू खत्म हो जाती है, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे फिल्मी हो, चाहे गजल हो, भजन हो। तो वो सुरीली इतनी है कि उनकी टक्कर का सुनना अभी तक तो मैंने सुना नहीं।

के के कबूतर करूं मैं गुजर दूं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर दूं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार

रहे, पास रह कर भी बहुत दूर रहे। एक बंधन में बंधे फिर भी तो मजबूर रहे।

0: मोहब्बत की बिरयानी।
1: ओ ओ कौन असरानी?
0: कदर मुरी ना जाने, अरे सरगम तीन तानी, मैं असरानी नहीं फरहाद हूँ फरहाद, आशिक ना मुराद, अपने अब्बा का नाम तो नहीं याद, हाँ मियाँ मजनू है मेरे उस्ताद, अरे सुन ले मेरी फरियाद, मुझे दे मुझे दे मुझे दे नींबू का अचार और दे तीखा तीखा प्यार।
1: अरे ओ मजनू के चेले, कहीं जाकर बेच केले, तू अपनी लैला को पहाड़ों में ढूंढ, घने झाड़ों में ढूंढ, वीरानों में ढूंढ, रेगिस्तानों में ढूंढ।
0: बट यू आर माई लैला एंड आई एम योर छैला।
1: ओह अरे ओ छैला, ना मैंने तुझे कभी देखा और ना है मेरे हाथ में तेरी रेखा।
0: अच्छा।

तो अम्मे भी चलो ले जा चल्ला निशान, अम्मे भी रानी ले जा चल्ला निशान, मेरी मोहब्बत तेरी जवानी चार दिन

0: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो?
1: हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम।
1: हाँ।
2: ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

जो बदल तेरे साथ होती है, जिक्र होता

was a mouse. खेल रहे थे डंडा गिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली, चूहे को पड़ गए जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। पंजरों का

और अकड़े रोज के झगड़े रोज के लफड़े लफड़े झगड़े अरे झगड़े लफड़े लफड़े लफड़े झगड़े।

गई भोली, कुंडी खोली, हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा, शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी।

मेहनत पर थारी और पर जीती लुड़ी खुशी पर लौट के आए आए रे आए रे आए रे आए रे आए पीना छूट गया।

बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिदाओं से जा जा।

धड़कते दिल से मेरे मद भरी आवाज आती है। ए, ए, ए, जा जा, अरे जा जा, जा जा जा रे।

मगलूल जाऊं। खेल खेल में मेलो दिल का ऐसा खेल दिखाऊं, नजरों की मैं डोर फेंक कर तेरा दिल उलझाऊं। पागल को पागल पहचाने जाने नहीं अनाड़ी, तो मैं हूँ मस्त मदारी, मैं हूँ मस्त मदारी। बिना तीर दिल घायल कर दूं ऐसा मैं हूँ शिकारी, तो मैं हूँ मस्त मदारी।

वाले छुप कर आते छुप कर करे इशारा, लेकिन दर्द छुपाए कैसे तीर नजर का मारा। छुपने वाले छुप कर आते छुप कर करे इशारा, लेकिन दर्द छुपाए कैसे तीर नजर का मारा। एक अदा पे हम करते कुर्बानी ये दुनिया सारी, तो मैं हूँ मस्त मदारी, मैं हूँ मस्त मदारी, बिना तीर बिन घायल कर।

पंच कहाँ रहता है, दरिया का बहता पानी चांद।

गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है।

ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर। मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई